0: ताली तक धीमी तक ताली तक धीमी तक झाला आंबो तक धुकी तक ताजी गेने तक नाक तक झुमी तक नाक नाक झुमी तक नाक नाक झुमी तक नाक नाक झम तारिता जग तारिता झन झाले गोगु तारी दाबू तारी गेटे ताली झम तारिता जग तारिता झन झाले गोगु तारी दाबू तारी गेटे झम तारी जग तारी जग नाक नाक ताजिन ताजिन ताजिन ताज झम तारी जग तारी जाने जाने को ताजिन ताजिन ताजिन ताज ताक दंग दंग दंग कर दंग दंग ताक दंग दंग दंग
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: Like a Gold. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Like a gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना।

मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वार न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र।
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208-514-54 Book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
12: सप्टेम्बर મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
13: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો,
14: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષોના ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
12: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં। હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 0793153420। નાટકનું નામ યાદ રાખજો,
15: હાલો પટેલ
16: Janma. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
17: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
18: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
19: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
13: Cutthroat Ke Khiladi.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: मैं हूँ अनीसा नासिर। लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Cool music for a super hot summertime on Leica Gold 107.4.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री राम लीला .theshowmanstudio.co.uk
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, auto protected.
6: September mahina ma hasano double dhamako fari aavi rahyo chhe.
7: Tame bata purush ho to lagne lagne kuvara ho chho.
8: E tame stri omne chhe ne purusho nam khota obovanu band karo.
6: Comedy king Nimesha ane queen of comedy Mallika Shah laine aavi rahya chhe. Super hit Gujarati natak Halo Patel bhai ni jaan ma. Have Risley, Potter's Bar, Ilford, South London ane Luton ma. Tickets ane vadhu mahiti mate aaj j call karo. Manju ne on 07931534270. Natak nu नाम याद रखो
9: पटेल भाई जन्मा
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: 2 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
11: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo, only Leica Gold.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
2: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
3: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
4: नाम है तेरा
3: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें. इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें. जय श्री राम.
5: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana or amazing excursions. Sub included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
6: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
9: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.
10: Kajal, can you wish my grandson Ryan and Kanaya good luck on their first day at school and all the children they're going to school? Thank you. Love, Nana and Nani. Bye.

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग पे बैठा पानी ताप।

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: The wait is finally over.
4: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
3: Mirzapur is coming to the big screen.
5: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
3: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
6: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
3: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Only one day to go. Mirzapur the movie, releasing tomorrow in your nearest cinemas.
5: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
3: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
4: दुबई इज कमिंग टू लंदन
5: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर। स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो by NKN Media
4: at a London Hilton on Park Lane. Meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
5: Special appearances by Chitranga Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaz Khan.
4: Hurry and register now
5: at nknpropertyexpo.com.
4: Your next investment could begin here.
5: Official radio partner, Leica Radio.
6: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर बेक थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk।
7: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Gold Breakfast with Kajal.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: The wait is finally over.
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
2: मिर्जापुर is coming to the big screen.
4: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
2: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
5: अगर कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
2: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। ओनली वन डे टू गो। मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग टुमारो इन योर नियरेस्ट सिनेमाज।
4: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।

0: किशोरदा और लता मंगेशकर की आवाजों में एक सुपरहिट फिल्म शक्ति, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और उसमें दिलीप कुमार ने भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। प्रोग्राम की शुरुआत हुई और उससे पहले आपने गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म दूल्हे राजा से गीत सुना, जिसमें सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज़ें थी। और इन दो गीतों के साथ लीजिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका साथ देने के लिए, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आज थर्सडे का दिन है और सितंबर महीने की 3 तारीख हो गई है और आज मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पिछले 2-3 दिन से फिर भी गुलाबी गुलाबी ठंडक थी, लेकिन आज मौसम में ठंडक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि धूप नहीं रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम अच्छा है, आप आराम से घूमने फिरने जा सकते हैं बिना किसी जम्पर को लिए हुए। तो मौसम अच्छा है, जाना चाहते हैं तो जाइए और नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आज भी यहाँ से आपको एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक सुनवाऊंगी। और हाँ, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 आज आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Olive oil ordered and arriving today with Amazon Prime. Phew, now that's off your mind. You can think about something else, like keeping your skin smooth. With a small drop of olive oil? Oh, that's nice. I feel so al dente. Someone sprinkle me with pepper. Same day delivery. It's on Prime. Geographic restrictions, cut-off times and T's and C's apply. Details on product page.
3: Yeah! Leica Gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रो।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा।
9: नाम है तेरा।
8: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।

0: क्या मीठी धुन बनाई है इस गाने की नौशाद ने। और इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला ने काम किया था। फिल्म का नाम लीडर और इस फिल्म के लिए भी दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आप सभी को थैंक्स कह देते हैं। महेंद्र बजारिया जी हैरो से, गिरीश जी भारत इंदौर से, हंसा बोरा जी, आंटी जी, प्रज्ञा, सलमा, गुरुदेव गांजा, ज्योति जी, हरीश खत्री जी, हमारे राजेश जी, संध्या भावसर जी, अर्जुन जी, दिव्या जी, तोची जी, हेतु सोलंकी, जासू जी, मिस्टर शेख, भरत गंगाराम जी एंड अनिल सोनी जी वियाना से आप सभी के मैसेजेस मिले हैं। सभी का स्वागत है शो में। और राजेश जी कहते हैं कि क्या आप जानती हैं आज स्काई स्क्रैपर्स डे है। आज स्काई स्क्रैपर्स डे तो है, लेकिन आज कुछ और भी है जिसके बारे में बात जरूर करूंगी। लेकिन फिलहाल सुनवाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबरें भारत से। देश भर में मानसून का प्रकोप है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित 15 राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के चलते उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने अयोध्या पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है और मंदिर परिसर के वित्तीय व प्रशासनिक प्रबंधन जैसे मशीनों से चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल पुराने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को ढहाए जाने की खबर के बाद भारत सरकार ने कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पड़ोसी देश से अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। और भारत द्वारा मध्यस्थता अदालत यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के क्षेत्राधिकार को खारिज करने के बाद पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय बातचीत की दोबारा पेशकश की गई है। भारत का रुख साफ है कि संधि के तहत पानी के बंटवारे और सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। और उधर अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार में उतार चढ़ाव है। घरेलू मांग के बीच सोने की कीमतें 1,52,000 से 1,56,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के दायरे में बनी हुई है, यानी कि सोना काफी महंगा हो रहा है। और अब विदेशों से आई कुछ खबरें आपको सुनाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के लारक आइलैंड पर स्थित लॉन्च सिस्टम पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठाएगा, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ये स्थिति बहुत लंबी नहीं खिंचेगी। उधर नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बाढ़ ने तबाही मचाई है। अब तक 1200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग लापता हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने राहत और बचाव कार्यों के बीच भारत द्वारा दी जा रही आपातकालीन सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। और अमेरिका ईरान टेंशन के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा था। ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $95 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। तेल कंपनियों ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने कीमतों को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए हैं। यही थी आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
1: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।

0: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। सुपर हिट गाना लता जी और किशोर दा की आवाजों में आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचते जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू डीन एंड जी जी, आपके मैसेज के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी, गाना आपको पसंद आया आपके नाम करते हैं। गुरुदेव गांजा, थैंक यू, आपने फर्स्ट मूवी देखी थी राम और श्याम 40 साल पहले दिल्ली में, ओहो, उसके बाद ये फिल्म देखी थी सौतन। चलिए ये गाना आपको आपके नाम करते हैं। और ये मैसेज भेजा है सोनल ने सटन सरे से। सोनल, ये मैसेज मेरे लिए है क्या, ज़रा चेक कीजिए, कहीं किसी और को भेज रही थी और मुझे तो फॉरवर्ड नहीं कर दिया है। हो जाता है ऐसा कभी कभी। इंदिरा जी फैमिली में हमारा साथ दे रही है, और इसके अलावा राजू आप हमारे साथ, रंजू जी आप हमारे साथ हैं, और जयंत एंड मीना जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है इस शो में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This is Leica Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को फोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Toothpaste ordered and arriving today with Amazon Prime. Phew, now that's off your mind, you can think about something else. Like the actual age of your toothbrush. Is it a few weeks? A month? A year? It could be a year. Better get a new one. Maybe two. Same day delivery. It's on Prime. Geographic restrictions, cut-off times and T's and C's apply. Details on product page.
4: Ye hai.
5: Leica Gold.
4: Leica Gold.
6: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: हाय दिस इज अरबाज खान। फॉर 2 डेज दुबई'स लीडिंग डेवलपर्स विल बी देयर इन लंदन 5th एंड 6th सितंबर 2026, लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन। स्पीक डायरेक्टली विद द डेवलपर्स शेपिंग दुबई'स फ्यूचर। Look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
7: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
6: Conditions apply. See online for details.
8: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
9: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane
10: on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: बुला रहे।
1: जी हाँ, बहुत ही मीठा प्यारा सॉफ्ट रोमांटिक गाना आपने सुना और इसका म्यूजिक था पंडित रवि शंकर शर्मा का। ये थी सुनील दत्त और नंदा की फिल्म जिसका नाम था आज और कल। और संध्या भावसर, निर्मला जी, जैस्मीन, आपको कहना है गाना बहुत अच्छा लगा, तो चलिए आप सबके नाम कर देते हैं। एंड देसराज बसंत जी, स्वागत है आपका भी इस शो में। और राजेश जी ने हमें याद दिलाया था कि आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्काई स्क्रैपर डे है। और ये दिन जो है वो आजकल की जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जिन्हें कहा जाता है उनको समर्पित है। देखिए, हम सब का ध्यान रखते हैं। और इसे जो प्रसिद्ध वास्तुकार हैं लुईस सुलिवन, उनकी जयंती यानी कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी होगी, उस पर मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक स्काई स्क्रैपर्स का जनक माना जाता है। और इसके अलावा आज मर्चेंट नेवी डे भी है, और ये दुनिया के कई देशों में, विशेषकर ब्रिटेन में और जो राष्ट्रमंडल डे है वहाँ मनाया जाता है। और इसके अलावा आज भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। भारत में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मनाया जाएगा, और इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे क्योंकि आजकल जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। बड़े लोग तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन बच्चे जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आजकल जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं उन्हें पता भी नहीं है कि ये चीज़ें उनके लिए कितनी नुकसानदायक हैं। और इसलिए देखिए, मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें,
2: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 105.6 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Laika Gold.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: No, sorry, mate.
7: No, we don't have that part.
8: Have you tried down the road?
9: We can get it in, but it won't be for a few days.
10: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply, subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
12: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
11: डेजर्ट सफारी,
12: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
11: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
12: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
13: साउथ हॉल ट्रेवल।
0: આટો પ્રોટેક્ટેડ
6: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
8: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો.
13: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
6: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈ ની જાનમાં. હવે રાઇસલી પોટર્સવાર ઇલફર્ડ સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
15: बस एक दिन और कल है जन्माष्टमी. कान्हा के स्वागत का जश्न मनाइए स्वाद और खुशियों के साथ. जैमिन द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया खुशियों का खजाना.
16: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन.
17: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
16: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
17: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
18: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
17: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
21: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
22: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
23: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में रितु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और ये समय है चिंतन का, चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज का चिंतन हम तक पहुंचाया है हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं देसराज बसंत जी। थैंक यू सो मच इस चिंतन को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के चिंतन में जो खास बात है वो ये है कि माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माओं ने इस बात को बार बार साबित किया है, और कुछ दिन पहले ये बात एक बार फिर से एक माँ ने साबित करके दिखाई है कि अपने बच्चों के लिए माँ किसी भी दुख से लड़ जाएगी, किसी से भी भिड़ जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी करने के में वो हिचकिचाएगी नहीं। आज जो मैं बात करने वाली हूं वो है महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजो गाई की रहने वाली 47 साल की महिला, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जो माँ के दृढ़ संकल्प की कहानी बयां करती है। और इनका नाम है रमाबाई रणवीर। रमाबाई रणवीर ने अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए मैराथन में हिस्सा लिया, और रमाबाई ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने ये दौड़ जीती भी। और जानते हैं रमाबाई रणवीर की ये जीत क्यों खास थी? इसलिए खास थी कि जहां बाकी लोग स्पोर्ट्स शूज ट्रैक सूट पहनकर मैराथन दौड़ रहे थे, वहीं रमाबाई साड़ी पहने नंगे पैर इस दौड़ में उतरी और उन्होंने मैराथन जीत ली। ये दौड़ आयोजित की गई थी इंडियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अमृत महोत्सव था, उसके तहत अमृत दौड़ आयोजित की गई थी जिसमें रमाबाई ने हिस्सा लिया था। और उन्हें इस दौड़ में जीतने का इनाम 3,000 रुपये नगद मिला। और जब उनसे पूछा गया कि वो इन 3,000 रुपये का क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि इसे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगी। आपको

पहनकर क्या कोई मैराथन दौड़ सकता है? क्या कोई मैराथन दौड़ भी ले तो जीत सकता है? उन्हें यही लगा होगा कि ये तो बस यूं ही आ गई हैं। लेकिन वहां पर वो बिल्कुल एक आम प्रतिभागी के तौर पर प्रतियोगिता में शामिल हुई और दौड़ से पहले रमाबाई को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो ये दौड़ जीतेंगी और विजेता बनेंगी। और जानते हैं, जब दौड़ शुरू हुई तो रमाबाई पूरे संकल्प के साथ दौड़ी, लेकिन जब वो दौड़ रही थी तो उनकी चप्पलें फिसलने लगी, जिससे उनकी रफ्तार पर असर पड़ने लगा। तो उन्होंने रुकने की बजाय चप्पलें उतार कर अपने हाथ में ले ली और नंगे पांव दौड़ना शुरू किया। अब चप्पल तो उतार ली, लेकिन साड़ी का क्या करे, साड़ी भी बाधा बन रही थी दौड़ने में। लेकिन रमाबाई को तो जैसे वो 3,000 रुपए नजर आ रहे थे, उन 3,000 रुपए से रमाबाई को लगता था कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी बेटी की पढ़ाई में ये बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और बस इसी संकल्प से चुनौतियों का सामना करते हुए नंगे पांव सड़क पर रमाबाई दौड़ती रही। उनके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, उन्हें दौड़ते समय अपनी साड़ी को भी संभालना पड़ रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों ने उनके अंदर जीतने का जज्बा कम नहीं होने दिया। वो दौड़ती रहीं दौड़ती रहीं, और देखिए उनके इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें स्पोर्ट शूज़ और ट्रैक सूट पहने हुए कई युवा जो साथी थे, दौड़ रहे थे, उनसे आगे निकलने में मदद की। और रमाबाई की जीत ने दर्शकों समेत वहां जो आयोजक थे उनको भी भावुक बना दिया, जब उन्होंने देखा कि एक 47 साल की औरत नंगे पांव पथरीली जमीन पर साड़ी पहनकर दौड़ी और जीती। सबकी आंखों में आंसू आ गए। और जब उन्होंने दौड़ जीतने के बाद बताया कि ये 3,000 रुपए उनके लिए कितने मायने रखते हैं, उनने पूछा क्या करेंगी इन 3,000 रुपए का? उसने कहा, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई में इन 3,000 रुपयों को इस्तेमाल करूंगी। देखा जाए तो 3,000 रुपयों की आजकल क्या कीमत है, लेकिन रमाबाई के लिए वो 3,000 रुपये एक बहुत बड़ी राशि थी, जिसके लिए उन्होंने जान लगा दी। कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे के भविष्य और शिक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी कठिनाई से टकरा सकती है। और ये भी बात सच है कि सही इरादा हो तो हर चुनौती पार की जा सकती है। सफलता महंगे जूते, ट्रैक सूट या आधुनिक सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। असली जीत मजबूत हौसले, लगन और जज्बे से मिलती है। महंगे जूते और महंगे कपड़े तो वहां बहुत सारे लोगों के पास थे, लेकिन जो जज्बा, जो हौसला रमाबाई के पास था, शायद वो उनमें से किसी के पास भी नहीं था। और इसीलिए तो देखिए दौड़ के दौरान चप्पल फिसलने या रास्ते में पत्थरों की रुकावट आने पर भी रमाबाई रुकी नहीं। जीवन की राह में आने वाली बाधाओं को उन्होंने अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उन्हें दरकिनार कर आगे बढ़ना सही समझा। और माँ ऐसी ही होती है। कहते हैं ना, जब ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था तो उसने मां बना दी, क्योंकि मां से अच्छा तो बच्चे का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता। और देखिए ये गाना भी कितना खूबसूरत लिखा है कि उसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या होगी, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।

0: चिंतन।
1: और इसीलिए शायद भगवान ने माँ जैसी चीज बनाई, क्योंकि भगवान तो हर तरफ हर किसी के साथ रह नहीं सकता, लेकिन माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों की सुरक्षा की खातिर अपनी जान पर खेल जाती है। कोई उसकी तरफ कोई उसके बच्चे की तरफ बुरी नज़र डालकर तो देखे, कोई उसके बच्चे को कुछ कहकर तो देखे, वो माँ होती है जो लड़ जाती है, भिड़ जाती है। और इसीलिए तो कहते हैं ना, माँ माँ ही होती है। और देखिए, एक माँ ने फिर से अपने बच्चे के लिए वो कर दिखाया जो आजकल मिसाल बन गया, आज मिसाल बन गया। और यस, आप सबने कहा है कि ये न्यूज़ खबर में है, बिल्कुल ये न्यूज़ खबर में है। तो देसराज बच्चन जी ने हमारे साथ ये शेयर किया और कहा कि चिंतन में ज़रूर आना चाहिए। तो बिल्कुल इसीलिए इस खबर को आज चिंतन में आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिन पर हम चिंतन कर सकते हैं, जिन पर हम विचार मनन कर सकते हैं और उन्हें भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये रमाबाई की कहानी, ये जो किस्सा है, ये बहुत इंस्पिरेशन देने वाला है। सो आपको पसंद आया, थैंक यू। लेकिन सबसे पहले देसराज बसंत जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा विजय घुनोवा जी, सही कहा, हाँ ईश्वर ही माँ है जिसने हमें बनाया है, बिल्कुल सही आपने। ढेर सारे मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू नलिनी जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू ललित छत्रीसा जी, कहते हैं चिंतन और उससे जुड़ा हुआ गाना भी हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गिरीश जी। आपने भी लिखा है कि यूं ही नहीं कहते कि माँ के पांव के नीचे स्वर्ग होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो माँ के चरण स्पर्श करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, वाकई में उन्हें स्वर्ग ज़रूर मिलता है। और स्वर्ग मिले या ना मिले, उनके मन में शांति ज़रूर रहती है कि जिन्होंने हमें पैदा किया, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, एटलीस्ट हमने उनके साथ कुछ ख़राब नहीं किया। लेकिन आजकल कुछ और भी खबरें, कल मैंने एक और बहुत ही दर्द भरी खबर देखी थी जिसे मैं आज शेयर नहीं करना चाहती किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन अर्जुन जी, संध्या बावसर जी, प्रीति जी बेल्जियम से, भावना जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लिखती है कि मम एक माँ ही ये कर सकती है अपने बच्चे के लिए इतना प्यार, और कौन करेगा। बिल्कुल सच बात है, हमारी ज़्यादातर साथी हैं वो माँ भी हैं, तो वो ज़रूर समझ सकती हैं कि ये जो माँ ने अपनी बच्ची के लिए किया है वैसा एक माँ ही कर सकती है। थैंक यू भारती जी, फतेह पटेल जी, थैंक यू महेंद्र बाजारिया जी, रागिनी जी, जगदीश जी बुशी से, अनिल सोनी जी वियाना से, विनोद जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए, आपको आज का चिंतन पसंद आया। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू निर्मला जी, किरण जी हैरो से, एंड थैंक यू गुरुदेव गांजा जी, थैंक यू। और आपने ये भी लिखा है कि फादर भी बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि माता और पिता जो बच्चे के लिए करते हैं वैसा तो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन आज क्योंकि माँ की बात हो रही है, इसलिए मैं माँ की बात कर रही हूँ आप सभी को चिंतन पसंद आया, सो थैंक यू साथ देने के लिए। चलिए अब लौटते हैं गीतों की ओर, सुनवाते हैं आपको दो गाने बैक टू बैक।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज £1 आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Like our gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. That has to.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
5: 2 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: Hum se sasta kahin nahi mil sakta.
7: Travel Hub.
6: At all protected.
5: Leica.
8: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: खूबसूरत गाना सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। आयशा जी और किशोर कुमार की आवाज है। फिल्म का नाम आनंदाश्रम, जिसमें शर्मिला टैगोर थी, साथ में थे उत्तम कुमार। और आपको बता दें कि आज उत्तम कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। कई सारी बंगाली फिल्मों में काम किया है, लेकिन कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है, जिसमें से एक फिल्म थी ये। ज्योति गिरी शाह प्रोग्राम सुन रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू अर्जुन जी, कहते हैं वाह वाह वाह क्या गाना बजा दिया है, मज़ा आ गया है, सो थैंक यू। एंड थैंक यू विजय गुरूरी जी, अभी हमारे साथ हैं, घर जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, और आपने चिंतन भी इंजॉय किया और गीत को भी पसंद किया। काजल फिल्म से छू लेने दो नाजुक होठों को, यस काजल फिल्म भी बहुत अच्छी है और मीना कुमारी और राजकुमार के करियर की एक अच्छी फिल्म है। और आपने ये भी कहा कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए। आपने ये भी बताया कि आपके पेरेंट्स ने ही आपको यहाँ यूके पढ़ने के लिए भेजा और आज आप जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। और बात बिल्कुल सच है, माता पिता का एहसान तो कोई कभी चुका ही नहीं सकता, इसलिए उनके साथ नम्र रहें, विनम्र रहें, प्यार से बात कहें। और कभी अगर कोई बात आपको अच्छी भी नहीं लगती तो सुन लें। आजकल बच्चों को ये लगता है कि उन्हें ज़्यादा समझ है, माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन जो उम्र का एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, जो खुद भुगती हुई चीज़ें हैं, अगर वो पेरेंट्स आपको कुछ बताते हैं तो सुन लीजिए, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। कभी ना कभी वो चीज़ें आपके फ़ायदे की ही रहेंगी, काम ही आएंगी। सो थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए मानू जी, थैंक यू दिनेश पोपट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथ दे रहे हैं। तो चलिए आपको ये खास खबर सुनवा दें। तो भाई दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, जिसे आपके लिए लाए हैं NKN मीडिया, एक बार फिर से लौट कर आया है 5 और 6 सितंबर, यानी कि दिस वीकेंड एट लंदन हिल्टन पार्कलैंड। और जहां पर आप मिल भी सकते हैं, यानी मिल सकते हैं या नहीं पता, लेकिन जहां पर आने वाले हैं अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकिरी। फ्री एंट्री है, रजिस्टर कीजिए nknpropertyexpo.com पर। और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप सब हमारे दीवाने हैं, यानी कि लाइका के दीवाने हैं। तो चलिए ये गाना आप सभी के नाम पर करते हैं।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Extra podcast update.
3: तो आपको याद दिला दे एक बार फिर से कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस और जिसे होस्ट किया है राजबधन एंड खुश ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: ये है Leica Gold।
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
0: We'll be right back.

लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में सिलसिला फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आपने गीत सुना सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, कुमार शानू की आवाज। शाहरुख खान की पहली सुपरहिट फिल्म दीवाना से लिया था ये गाना, जिसमें उनके साथ थी दिव्या भारती, जो बहुत ही छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और लीजिए, दो बैक टू बैक गीतों के साथ ये प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है, जिसमें आप सुन रहे हैं मुझे, और मेरा नाम है ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और अभी अगर जुड़े हैं तो भाई आपने दो घंटे में बजने वाले गीतों को तो मिस

0: कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका स्वागत है इस आवर में। और फारूक मोहम्मद जी, धन्यवाद आपका, आपने मैसेज भिजवाया है। और अब सुनवाऊंगी आपको आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गाना। और आप जानते हैं इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है ब्यूटीफुल नेपाली बाला माला सिन्हा, उनका गीत बजाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक खास इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, और ये जो संदेश है ये है मर्सिडीज बेंज वंस की ओर से, लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनिए, जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, बल्कि आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर निर्भर करता है। इस सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आया है अप टाइम प्रॉमिस। आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा अब एक ही जगह। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अब टाइम प्रॉमिस के बारे में और जाने। नियम और शर्तें लागू होंगी। मर्सिडीज बेंज वैन्स अप टाइम प्रॉमिस, कुछ पात्रता मानदंडों, वाहन की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विस करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें भी लागू होंगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिल सकते हैं 127.65 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आप करवा सकते हैं via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. The wait is finally over.
2: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
1: Mirzapur is coming to the big screen.
3: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
1: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
4: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
1: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Only one day to go. Mirzapur the movie releasing tomorrow in your nearest cinemas.
3: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
5: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
14: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
13: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
14: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
15: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
14: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: नमस्कार. मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.

0: जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में कन्यादान फिल्म से था ये गाना, जिसमें शंकर जय किशन का म्यूजिक था। और हमारे ज्योति गिरी शाह कहती है, वाह वाह वाह, क्या गाना है, आपको पसंद आया। चलिए आपके नाम करते हैं। हिमांशु पटेल जी, थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ भारती जी एंड महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, जिसे एक बार फिर से सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं। और ये शो शुरू होने वाला है एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो स्टार फ्रॉम दिस संडे 6th September। और फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टार इसके ईच एंड एवरी एपिसोड को स्ट्रीम करेगा अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। तो जियो स्टार इज नाउ अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: ये है Like a Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: तो अगर आप हॉलीडे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साउथ होल ट्रैवल को कॉल कीजिए, क्योंकि उनके पास दुबई के लिए बड़ी अच्छी डील्स है। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। साउथ होल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: हॉलीडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ होल ट्रैवल। लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलीडे पैकेजेस। विजिट southholtravel.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: This just in from Greggs. We've insured the nation against a cheese. That's the Stilton in our new Steak and Stilton Bake, insured because a third of you are currently thinking, but I don't like Stilton. So, if you don't like our Stilton through soft steak and gravy in pastry that flakes all down your top, we'll swap it for a steak bake. Greggs new Steak and Stilton Bake with free, but I don't like Stilton insurance. Terms apply. Exclusions non, excess non, already bitten it fine in the event of a claim. We'll be very surprised.
3: Yeah.
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में सावन बादो फिल्म से था ये गाना, जिसमें सोनिक ओमी का म्यूजिक था और ये फिल्म रेखा और नवीन निश्चल की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म से डेब्यू किया था रंजीत ने, जो अपने ज़माने के एक जाने माने विलन भी थे। सो ये गाना था और अब बहुत ही कम समय रह गया है अब मेरे पास इस शो में, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: वैसे आज है 3rd September और आज शक्ति कपूर, जो आंखें निकालकर गोटी खेलते हैं, आज उनकी बर्थडे है। और साथ ही साथ आज हम सभी के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, जो प्यारेलाल जी हैं, वो भी अपनी जन्मदिन मना रहे हैं। आज 86 ईयर्स की हो गई और आज अगर आपकी भी बर्थडे है तो हमारी ओर से आपको भी हैप्पी वाला बर्थडे।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो £1 आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The Gold Rate is £105.6 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: तो लीजिए आज का साथ बस यहीं तक, अगला गीत आपको लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार बाली ब्रह्मभट्ट आपके साथ होंगे। लेकिन कल जन्माष्टमी का त्यौहार है तो कल हम और आप साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे और कल मेरा फास्ट होगा तो नो फूड पिक्चर्स, खाने पीने की फ़ोटो मत भेजिएगा कल उनकी खास मनाही रहेगी क्योंकि मुझे पता है कल बहुत सारे साथी फास्ट करेंगे। कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है तो अच्छे अच्छे गाने भी बजेंगे और मुझे चाहिए आपका साथ। तो बस कल जन्माष्टमी मनाएंगे धूमधाम से। आज के लिए बस इतना ही, अगला गाना सुनिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय।
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
4: ये है
2: Leica Gold.
6: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
7: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
8: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
9: अपना बनाया तेनू,
8: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 September ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 September इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
12: साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
13: क्योंकि आ गया है डर का नया दौर।
14: खतरों के खिलाड़ी सैटरडे एंड संडे एट 8 पीएम ऑन कलर्स टीवी, पावर्ड बाय स्टार टूर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर लाइन क्रॉप।
15: खतरों के खिलाड़ी।
16: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
17: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
18: Dubai is the place.
17: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
19: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
20: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
21: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
22: Have you noticed the way fans shout at football matches?
23: Oh, wake up!
22: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
24: सप्टेम्बर महिनामां હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
25: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો.
26: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
24: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
27: Calling all samosa lovers, Laika Radio and Ashoka Samosa celebrating World Samosa Day in style. Listen from Monday and all week for your chance to win a £50 Amazon gift voucher. Keep listening, get ready to enter and celebrate World Samosa Day with Ashoka Samosa and Laika Radio.
28: Up next, Bally Brumbat with Gold Afternoons on Laika Gold.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: This is Like a Gold across Greater London.
1: And believe you me, I'm so excited in presenting this show today. Because लक्ष्मीकांत जी और प्यारे जी प्यारे लाल जी के साथ एक अच्छा रिश्ता था मेरा. गानों का रिश्ता नहीं था लेकिन दोस्ती का रिश्ता था. जब भी लंदन आता था लक्ष्मीकांत जी बोलते थे वो बिस्किट का टिन ले आना, बिस्किट तेरे चाय मेरी. फिर मैं जाता था, हम दोनों बैठ के जोक्स मारते थे और बिस्किट खाते थे. और प्यारे जी ने मुझे कहा कि तुम इतने अच्छे लड़के हो, लंदन से दूर आए हो और घर का खाना यहाँ मिलता नहीं है, तो मेरे घर आया करो. और भाभी जी मुझे कहती थी, ब्लेस हर सोल, शी पास्ड अवे रिसेंटली, एंड सुनीता भाभी मुझे हमेशा कहती थी कि आलू के पराठे तुमको पसंद है. मैंने कहा बहुत ही पसंद है. एंड शी यूज़ टू हार्टिली प्रिपेयर आलू के पराठे विद चटनीज एंड रेड एंड ग्रीन, शी यूज़ टू गिव मी अ चॉइस. तो जब भी मैं बैंड्रा की साइड जाता था तो मैं कहता था अगर मुनासिब है तो मैं आ जाऊं, मुझे मन कर रहा है कि मैं आलू के पराठे खाऊं. एंड देयर इज कौन सी चटनी, मैं बोलो लाल, इस बार लाल, नेक्स्ट टाइम ग्रीन. ऐसे मजाक होता था हमारा. एंड कभी इनके सामने मैंने शराब नहीं मैं पीता था. वो जब भी मुझे बोलते थे आप क्या लोगे, फिर मेरा एक दोस्त यहाँ लंदन से, शाह दोस्त, वो विपुल करके, विपिन, वो आया था वहाँ पे. तो बोलता कि लायंस क्लब के थ्रू हमने या कोई रोटरी क्लब के थ्रू हमने एक शो करना है. तो मैं उसको ले गया तो प्यारे जी बोले कि आज तो तुमको मेरे साथ बैठ के एक ड्रिंक मारनी पड़ेगी. सो देन दैट वॉज द फर्स्ट टाइम हिज फेवरेट यूज टू बी रेड लेबल. सो आई हैड वन ड्रिंक विद हिम. एंड प्यारे जी के साथ एक ऐसा रिश्ता था कि हर एक बर्थडे पे शिवसेना के कॉरपोरेटर जो थे उनके साथ मैं जाया करता था प्यारे जी को हैप्पी बर्थडे करने के लिए. तो हम फूलों का गुलदस्ता ले जाते थे उनकी बर्थडे पे उनके घर पे. एंड एक बार इन्होंने हमें एक अच्छी ट्रीट दी थी. बोलते कि मैं कभी भी मतलब शराब पी के कभी कोई इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं बजाता हूँ. उनके घर में जो पियानो था तो पियानो के रूम में बोलते कि पहले मैं आपको गाना सुना देता हूँ फिर उसके बाद हम ड्रिंक लेंगे. सो ऐसा किया, उन्होंने जाके पहली बार मुझे पियानो पे दोस्ती का गाना सुनाया था. एंड हम हर बर्थडे पे शिशिर शिंडे, वो कॉरपोरेटर का नाम है जो मुझे पहली बार ले गए थे उनको मिलने के लिए. सो उसके बाद हमारा ट्रेंड रहा था. एंड पिछली बार मुख्तार शाह जब यहाँ आए थे तब प्यारे जी का बर्थडे था तो हमने पूरे ऑडियंस को गवाया था एक प्यार का नगमा है. और वो वीडियो हमने प्यारे जी को भेजा एंड ही वाज सो हैप्पी बिकॉज सारा लंदन का ऑडियंस गा रहा था. एंड जो वहाँ ऑडियंस में थे वो लोग जानते होंगे कि हमने ऐसा किया था. दिस वाज एट 27 काम. सो आज प्यारे जी शर्मा को हम 86th हैप्पी बर्थडे कहते हैं एंड विशिंग हिम अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ. तो हर एक जॉनर का गाना जो है, नेक्स्ट जॉनर होगा इट विल बी द क्लब जॉनर, दैट इज कैबरे जॉनर. हमने दो जॉनर सुनाए थे, मैंने 14 जॉनर्स उनके इकट्ठे किए हैं. मुजरा जॉनर है, हैप्पी जॉनर, सैड जॉनर, फिर उसके बाद पार्टी का जॉनर है, फिलोसॉफिकल है. तो ये सब सुनते जाइएगा, आप दो घंटे लगेंगे मुझे तो बातें कम और काम ज़्यादा. पैसा पैसा वो तो था हमारा डिस्को वाला और उसके बाद था यारी वाला, अब नेक्स्ट होगा कैबरे वाला.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And £1 in British sterling can get you up to, let's see what the latest rate is, 127.65 Indian rupees. 127.15 Indian rupees to a British sterling pound. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
7: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Only one day to go. Mirzapur the movie, releasing tomorrow in your nearest cinemas.
6: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
8: No, sorry, mate.
9: No, we don't have that part.
10: Have you tried down the road?
11: We can get it in, but it won't be for a few days.
12: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
13: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
14: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
13: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
14: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
15: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
14: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
18: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
17: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
18: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
17: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
18: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
17: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
18: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
19: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
20: Lights on, shutters up, staff ready.
19: But today's customers don't start on the high street.
20: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
19: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
20: They walk into your competitors.
19: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors.
20: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
21: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
22: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
21: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
23: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
24: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
25: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
26: Like a goal.
0: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Dubai is coming to London.
2: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
1: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai. Explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
2: Special appearances by Chitranga Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaz Khan.
1: Hurry and register now
2: at nknpropertyexpo.com.
1: Your next investment could begin here.
2: Official radio partner, Leica Radio.
3: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
4: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
8: 4 beers, please, garçon!
7: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: And there you go, that's the party genre of Lakshmikant Pyarelal wishing Pyare Ji happy 86th birthday. This song Zindagi Imtihan Leti Hai, Naseeb film ka 1981 ki film. Usme Kamlesh Awasthi ga rahe hain Amitabh Bachchan ke liye, Anwar saab ga rahe hain Rishi Kapoor ke liye, aur Suman Kalyanpur sang for the female lead actors. That's Hema Malini and Reena Roy. So, I hope you're enjoying the genres. Message me.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3512, Indian rupees 127.69, Afghanis 88.89, Pakistani rupees 374.49, Kenyan shillings 174.89, and Mauritian rupees 63.37.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £106.33 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
4: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: 073-00-99-8823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन

0: ये गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है क्योंकि दे वर अमेजिंग 30 years, मोर देन 3 decades इन्होंने रंग जमाया. एंड लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल, उनमें जो एज का डिफरेंस था, लक्ष्मीकांत जी वॉज 2 years and 10 months ओल्डर देन प्यारे लाल शर्मा. क्योंकि प्यारे जी की बर्थडे देखो, 3rd of September 1940 और 3rd of November 1937 में लक्ष्मीकांत जी का जन्म था. सो देर वॉज 2 years and 10 months का फर्क था, लेकिन दोनों का भाईचारा, ओ माई गॉड, दे रिमेन्ड इन द टॉप फॉर नियरली 3 decades सिंस 1960s, 70s, 80s, रीचिंग देयर करियर्स पीक. एंड वेन द एरा ऑफ एस डी बर्मन, देन शंकर जयकिशन, ओ पी नैयर, नौशाद, मदन मोहन, रोशन खयाम, इट केम टू एन एंड. वो एरा जब खत्म होने लगा तब आ गए थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: Har ek genre mein se ye genre hai. It's a ghazal genre. Lekin ghazal ka genre in romantic style. Ghazal style romance.

0: It's such a beautiful moment to listen to all these songs. You know, 635 films. अभी इसमें से हजारों गाने उसमें से बैठ के चुनना, तो मैंने सोचा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गाने तो मतलब 12 महीने, यू कैन से 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, 24/7 हर रोज लाइक अ गोल्ड पे आप सुनते रहते हैं, तो उनमें से चूज कैसे करूं मैं, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम आ जाता है तो दोस्ती फिल्म का गाना ही आ जाना चाहते हैं। फिर ना हमको पता कि पारस मणि का पहली फिल्म थी उनकी, तो उसके गाने याद आ जाते हैं। मतलब अमर अकबर एंथनी, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये सब गाने जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के टॉप 10 में आया करते थे। ऑफकोर्स आफ्टर पारस मणि 1963 में, जैसे मैंने अर्लियर ऑन कहा था कि वीकली बिना का गीतमाला जो आता था तो 16 गाने आते थे, उसमें से 8 तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हुआ करते थे। एंड देन एनुअल बिना का गीतमाला जो आती थी उसमें 32 गाने होते थे, उसमें से 15 गाने तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही होते थे। मतलब गाने आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन थोड़ा चूज़ करना था कि कौन से जॉनर में मैं करूं। सो अलग अलग जॉनर मैंने चूज़ किए, और ये सब जॉनर्स मैंने जो चूज़ किए थे वो क्लब एंड डिस्को वाला, देन पार्टी एंड डांस वाला, देन हैप्पी एंड प्लेफुल। एक बड़ा अच्छा, आई एम गोइंग टू एंड माय शो विद दैट हैप्पी एंड प्लेफुल सॉन्ग एज वेल, एंड अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनल गाना एज वेल, एंड सैड एंड मेलेंकोलिक गाना आपने सुना अभी, लंबी जुदाई फिल्म हीरो का। फिर फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव गाना जो होता है, तो वो गाना मैं एक हमारे वंडरफुल दोस्त कहो, वंडरफुल लिसनर ऑफ लाइका गोल्ड कहो, या तो हमारे अच्छे मित्र और हमारे पूरे लाइका गोल्ड के परिवार के मित्र, और उनको हम हैप्पी बर्थडे करने वाले हैं। सो हमारे कमलेश भैया, थैंक यू वेरी मच, आवर हेड ऑफ मार्केटिंग हु टोल्ड मी अबाउट द बर्थडे, एंड वी आर गोना रियली क्वालिटी फूड्स के जो मालिक है उनका बर्थडे जो है, तो उनको हम हैप्पीली विश करेंगे। और स्वाहिली में, दैट्स राइट, विपुल सेदानिया जी आपके लिए गाना भी चूज किया है, एंड मिमिता फाया विम्बो या इले नासेमानिनी आफियांजेमा गुड हेल्थ, दैट इज यू नो, एंड फॉर योर हेरी या कुजालीवा, दैट्स हैप्पी बर्थडे हेरी या कुजालीवा, दैट्स राइट, स्वाहिली में बोलेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है आज। तो थर्ड आवर में आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ द फैमिली ऑफ ब्लू रूम्स गॉट टूगेदर, द फैमिली ऑफ ब्लू रूम्स, नरेश भाई, फिर हमारे महेश आरियल, एंड वी गॉट अनीसा एंड दिलीप भाई, एंड ऑल द फैमिली, दे गॉट टूगेदर एंड डिड अ ट्रिब्यूट, आई मीन अ पर्टिकुलर शो फॉर द कलेक्शन ऑफ चैरिटी फॉर द नेपाल फ्लड्स, फ्लड विक्टिम्स, एंड दे कलेक्टेड £51,000, एंड आई वुड लाइक टू से अ स्पेशल थैंक्स टू लायंस क्लब एज वेल, हु हैड एक्चुअली done the whole thing, Lions Club of Sudbury, who had been great, great help, believe you me. Can't forget Dipti also of the Blue Room family. So Nepal ka fundraising jo hua. Dusra, of course, Sona Rele. You remember the daughter of Uma Pujara and Shailesh Pujara, I talked about The Voice, and I mentioned how we are so proud at Laika Gold for her coming into the next round. She was chosen overwhelmingly by the judges of The Voice. And Sona Rele actually sent me a message. You won't believe this. Here we are. Let me try to get that particular message that she had sent to me, saying thanks to Laika Gold and how fond she is of the radio as well. And I was chuffed when I heard this message of Sona Rele. Sona Rele, I wish you nothing but all the best. We saw you growing from a little child and going into America and becoming a great, great superstar, a pop star. Here is Sona's message to us, and I hope I can put the volume loud.
1: Hi, Barney G. Just wanted to say thank you so much for all the love that you guys have been giving me. Keep watching. Stay tuned. I'm so excited. Sending so much love to Like a Gold.
0: Oh, isn't that beautiful? I'd like to hear it again.
1: Hi, Barney G. Just wanted to say thank you so much for all the love that you guys have been giving me. Keep watching. Stay tuned. I'm so excited. Sending so much love to Like a Gold.
0: And we wish you luck as well, because you're in the next round, and on Saturday we shall be glued to the television to watch The Voice. Yes, with Tom Jones sitting, Will I Am sitting right opposite you. Wow.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.15 Indian rupees. 127.15 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: Dubai is coming to London.
2: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
4: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
2: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
4: Hurry and register now
2: at nknpropertyexpo.com.
4: Your next investment could begin here.
2: Official Radio Park. Like a radio.
5: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
6: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands. Aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: The wait is finally over.
2: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
1: Mirzapur is coming to the big screen.
3: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
1: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
4: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
1: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Only one day to go. Mirzapur the movie, releasing tomorrow in your nearest cinemas.
3: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
5: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me.
10: Southall Travel, Auto Protected.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
14: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767-7627।
17: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जब मैंने गाना सुना नहीं था तो मैंने कहा रफ़ी साहब और आशा भोसले, जब सुना तो पता चल गया इमीडिएटली कि दिस इज़ लता जी एंड नॉट आशा जी। एंड रफ़ी साहब और आशा जी ने गाया फिल्म जाल, 1967 की फिल्म। लेकिन अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपनिंग टू बी माला सिन्हा विद बिस्वजीत इन द 1967। ओ माय गॉड, दैट वाज अ रियल रियल सस्पेंस थ्रिलर। एंड म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऑफ कोर्स विशिंग प्यारे जी हैप्पी 86th बर्थडे। और भी मैं आपको न्यूज देना चाहता हूं, एंड दैट न्यूज हैपेंस टू बी Big Boss is back. The 20th season of Big Boss is back, hosted by Salman Khan. The show airs every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar from this Sunday, 6th September. And for the first time, Jio Hotstar will stream every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. Okay, dusra news sunenge. बताता हूँ, आप इतने एक्साइट क्यों हो जाते हो? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कविता कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति लाइव परफॉर्म्स एट रॉयल आल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, दैट इज रॉयल आल्बर्ट हॉल। एंड आई स्पोक टू नितिन जी, yes, Nitin Palan, who is in Paris at the moment on the opening of the temple there. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. And not only that, we've got Laika Radio Network confirming a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at laikaradio.com. And last but not the least, the Dubai Property Expo, brought to you by NKN Media, is back 5th and 6th September at London Hilton Park Lane, featuring celebrity guests Arbaaz Khan, Jacqueline Fernandez, and Chitrangada Singh and Nargis Fakhri. Free entry. Register at nknpropertyexpo.com. Exclusive radio partner, Laika Radio, 1111.
1: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Laika Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: Good afternoon. Delays already if you're on the A12 in Redbridge, just before the Redbridge roundabout. If you're travelling west, you've got a travel time of 10 minutes already. Traffic already queuing on the A12 as well, from Leighton to Wanstead, near to the Redbridge roundabout. Again, around a 15-minute wait there. A13 in East London, eastbound from Prince Regent Lane towards the Lodge Avenue flyover. That's looking slow, as is the A2 New Cross Road as well, and along Blackheath Road in Deptford. Again, delays of 50 minutes towards the Blackheath corner. And Wandsworth Bridge Road in Fulham as well. Also busy this afternoon past the New Kings Road. Again, you're going to be held up for around 10 minutes or so there this afternoon. And that's your latest traffic and travel.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This just in from Greggs. We've insured the nation against a cheese. That's the Stilton in our new Steak and Stilton Bake, insured because a third of you are currently thinking, but I don't like Stilton. So, if you don't like our Stilton through soft steak and gravy in pastry that flakes all down your top, we'll swap it for a steak bake. Greggs new Steak and Stilton Bake with free, but I don't like Stilton insurance. Terms apply, exclusions none, excess none, already bitten it fine in the event of a claim, would be very surprised.
0: Bally Brumbert on Gold Afternoons.
3: Like a Gold.
4: मैं हूँ निशा नासिर. Like a Gold London और Greater Manchester में मेरी और आपकी मुलाकात Monday to Friday शाम 7 बजे से 10 बजे रात Big Show में जारी रहती है. Big Show सुनना भूलिएगा मत.
5: Gem in Gold Afternoons with Bally Brumbert. Bally Brumbert. Gem in Foods. बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात. Available at Asian stores near you.
0: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
10: Dreaming of paradise?
11: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
10: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
11: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
10: At all protected.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
14: गुरु गुरु,
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
13: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
16: टू बुक कॉल 0208514 5400. Book online at Eventbrite.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: two businesses.
3: Same town.
2: Same service.
3: One appears on page one of Google.
2: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
17: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
18: नाम है तेरा
17: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें जय श्री राम
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
21: Hi, this is Chitranibal Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
22: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: एक दो तीन, दिस अ सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द सुपर डुपर हिट मूवी तेजाब. सो दिस मूवी एक्चुअली रिलीज्ड इन नवंबर इन 1988, एंड क्या सुपरहिट मूवी थी. माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात अबाउट दिस मूवी. सो इनिशियली अनिल कपूर के रोल के लिए ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस. आदित्य पंचोली वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस मूवी, एंड देन ऑफकोर्स द मूवी वेंट टू अनिल कपूर एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब एज मुन्ना. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस मूवी. सो इनिशियली यू नो चंकी पांडेज रोल, बबन्स रोल वॉज नॉट सपोज टू डाई टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी, बट देन द डायरेक्टर एन चंद्रा थॉट दैट लेट्स गिव इट अ ड्रामेटिक एंड, एंड दैट्स वेन दे डिसाइडेड दैट बबन्स कैरेक्टर शुड डाई एट द एंड ऑफ द मूवी. ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें मैं आपके साथ करता रहूंगा. आई एम वीर इन फॉर द लवली सैंडी शाह ऑन गोल्ड ड्राइव ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.15 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Leica Gold. Traffic and travel.
3: Good afternoon. On the North Circular in Wanstead, an early accident still causing some delays between the Redbridge roundabout and also South Woodford. Take care if you're headed that way. And the accident occurred near to the Charlie Brown roundabout. A12 Eastern Avenue in Wanstead, an early accident there near to the Green Man roundabout causing some delays. Traffic busy heading north as a result. A13 meanwhile, eastbound slow from Prince Regent Lane through towards the Lodge Avenue flyover. Meanwhile, you'll find the A12 from Leighton to Wanstead.

0: है नरगिसे मस्ताना, दिस प्यारा वाला गाना फ्रॉम द मूवी आरजू. अच्छा, ये मूवी वॉज अ सुपर हिट एंड इट वॉज राजेंद्र कुमार्स फिफ्थ कंजेकेटिव मेजर सक्सेस. एंड कहते हैं दैट दिस रन फॉर 26 वीक्स in Kolkata. There's a very iconic theater called Hind Cinema, and this movie actually ran there for a good 26 weeks. And of course, इस मूवी में फिरोज खान भी थे. सो इट वॉज अ लव ट्राइंगल बिटवीन राजेंद्र कुमार, साधना एंड फिरोज खान. फिरोज खान वॉज अ न्यू कमर इन दिस मूवी एंड दिस मूवी एक्चुअली शॉट हिम टू फेम एज वेल. बहुत ही प्यारी वाली मूवी है. इफ यू हैव एंड वॉच इट, आई डेफिनेटली रिकमेंड, देखिए जरूर.
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: One of my favorite on-screen and off-screen jodis, Neetu Singh and Rishi Kapoor. This a lovely track in the vocals of Asha Bhosle and Kishore Kumar from the movie Khel Khel Mein.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
2: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
3: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
2: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर बेक थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
5: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
6: Cutthroat Ke Khiladi.
7: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi तड़का is total riz, है ना?
8: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 मजेदार flavors.
7: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
9: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
12: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 PM on Leica Gold. Make it a date.

0: कह दू तुम्हें या चुप रहो, दिस अ सुपर हिट ट्रैक फ्रॉम द सुपर हिट मूवी दीवार, इन द वोकल्स ऑफ किशोर कुमार एंड आशा भोसले. वन मोर ट्रैक दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून बिकॉज मेरे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं इन द नेक्स्ट आवर.
1: Non-stop classics. Like a gold.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: एक बहुत ही प्यारा वाला गाना फ्रॉम माय गानों का पिटारा इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड मनोहर दास फ्रॉम द मूवी अभिमान. आई थिंक जया बच्चन एंड अमिताभ बच्चन वर सो ब्यूटीफुल इन दिस मूवी. एंजॉय दिस लवली ट्रैक.

0: रिम जिम के इस प्यारे वाले गाने के बाद एक और सॉन्ग एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर ऑन लाइक अ गोल्ड
1: फॉरगॉटन मेमोरीज रिफ्रेश्ड लाइक अ गोल्ड.

0: Latest traffic and travel.
1: This just in from Greggs. We've insured the nation against a cheese. That's the Stilton in our new Steak and Stilton Bake, insured because a third of you are currently thinking, but I don't like Stilton. So, if you don't like our Stilton through soft steak and gravy in pastry that flakes all down your top, we'll swap it for a steak bake. Greggs' new Steak and Stilton Bake with free, but I don't like Stilton insurance. Terms apply, exclusions none, excess none, already bitten it fine in the event of a claim, we'll be very surprised.
2: Yeah, yeah, yeah, hello. Like a gold.
3: Like a gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
5: What would make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
6: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
5: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
6: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
7: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर, बिग थिएटर हेज. टिकट बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
8: નમસ્કાર. માર્ચ 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4,499 pounds પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: One performer.
2: Countless personalities.
1: A whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉरपोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
4: 2 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
5: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
4: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, रहने दो, छोड़ो भी, जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द ब्यूटिफुल मूवी कटी पतंग। एंड इस गाने के साथ वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय। हम है राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अनीसा जी इज इन द स्टूडियो। एंड जब अनीसा जी का शो अप नेक्स्ट है तो मैंने कहा मैं भी एक शायरी कर ही डालूँ। तो पेशे खिदमत है, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, क्या कहें, हमें अनीसा जी का अंदाज पसंद है। अनीसा जी, ओवर टू यू।
1: थैंक यू वेरी मच। और वो लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे, दिस इज लाइक अ गोल्ड।

0: दुनिया के तज़किरे तो तबीयत ही ले बुझे, दुनिया के तज़किरे तो तबीयत ही ले बुझे, बात उसकी हो तो फिर सुखन आराइयां भी हों, पहले पहल का इश्क अभी याद है फराज, दिल खुद ये चाहता था कि रुसवाइयां भी हों। लो जी आ गए हैं हम, अब रुसवा होते हैं या नहीं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू यू। किद्दां कीमी किंज, आई होप कि आप सब मज़े में हैं। मैं भी बहुत मज़े में हूँ, लेकिन स्टूडियो में हूँ और आप भी मेरा साथ निभाएंगे। स्टूडियो में ना होते हुए भी इस बात का एहसास दिलाइएगा कि आप स्टूडियो ही में मेरे साथ मौजूद हैं, फिर ही मज़ा आएगा। गीतों में आज भी कुछ ना कुछ कॉमन है और वैसे 3 अदद सही जवाब मिल चुके हैं मुझे, वाह। और मुझे लगता है मेरे बिछाए हुए जाल में कुछ मछलियां और मछले भी ऑलरेडी फंस चुके हैं। वेल डन अनीसा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें, your 1 pound in British sterling can get you up to 127.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Dubai is coming to London.
1: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
2: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
1: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
2: Hurry and register now
1: at nknpropertyexpo.com.
2: Your next investment could begin here.
1: Official Radio Park. Leica Radio.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Banda parwar hijab lazim hai, har nazar parsa nahi hoti. और क्या ही खूब किसी ने कहा है कि हिजरे जाना में हुस्ने जाना पर लफ्ज क्या क्या पिरो गए हैं हम. तुझको देखा तो कुछ नहीं देखा, तेरी तस्वीर हो गए हैं हम. लीजिए भाई, जहाँ तक देखने का ताल्लुक है तो एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं अपने उन लिसनर्स से जो मुझे उर्दू फॉन्ट में लिख कर भिजवाते हैं. भाई आप फॉन्ट अच्छा भला पहला यूज़ करते थे, अब आपको नहीं अंदाज़ा मेरी उम्र बढ़ती जा रही है. मैं ना मानूँ तो और बात है, लेकिन बढ़ तो रही है ना यार, और उस हिसाब से नज़र घट रही है. अब करीब की ये जो ग्लासेस मैंने लगानी शुरू की हैं, ऑनेस्टली पहले तो सर चकरा जाता है, फिर छोटी छोटी आंखों को बड़ा करना पड़ता है, और बड़ी तो खैर है नहीं है, फिर छोटी छोटी आंखों को और छोटा करके मुझे देखना पड़ता है कि किसने क्या लिखा है. तो अगर यू स्टिक टू द ओल्ड फॉन्ट तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे बार बार अपनी उम्र का अंदाज़ा नहीं होगा. तो प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर ज़रा बड़े बड़े अल्फाज में जो है वो मैसेज भिजवाइए. लीजिए, वो जो मैंने कहा था कि मछलियाँ और मछले फंस रहे हैं, तो मैंने बहुत गलत कहा था, सिर्फ दो मछलियाँ फंसी हैं, मछला कोई नहीं फंसा. अंजुम जी और सलमा जी आपके जवाब गलत हैं. दीनी जी और द रानी ऑफ द आवर, अली जी अटलांटा से, फ्यू सेकंड्स की बस जो है ना वो देरी हुई, वरना आप राजा बनते रह गए. चलो मेल में आप ही ने सबसे पहले जवाब भिजवाया तो आपको राजा बना देते हैं. मंजीत संगर जी, उल्लास जी, मोहम्मद अयूब चौहान जी, ताहिर जी आज सही हो गया जवाब. गीता हर्ष जोशी जी और अमित जी, ये आपके जवाब बिल्कुल सही हैं. और इरम जी आप कितना हंस रहे हो, मैंने क्या कहा है. हंस दे रहो ते वस दे रहो. गुल जी मतलब इतनी बटरिंग भी ना करो यार, समझदार हो ना आप तो खुद. बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए. और इरम कहती आप ही को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है ना.
0: ये है Like a Gold Feel Good Classics With Anisa Nasir.
2: और नेक्स्ट क्लासिक से पहले एक बहुत ही क्लासिक किस्म का मैसेज आप सभी के नाम. और ये पैगाम जो है मर्सिडीज बेंज वैंस की जानिब से है. और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आपकी ये जो वैन है बस आपके आने जाने का जरिया नहीं है, ये आपकी रोजी रोटी और साख भी बन जाती है, इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस कायम किया, यानी कारोबारी फायदों का एक मुकम्मल पैकेज. जैसे सड़क पर 24/7 आपको हेल्प मिल सकती है, वर्कशॉप देर तक खुली रहना, गाड़ी हर लम्हा मॉनिटरिंग, यानी हर वो चीज़ जिसकी आपको अपनी वैन के डाउनटाउन को कंट्रोल करने और कारोबार चलाए रखने की ज़रूरत पड़े. मर्सिडीज बेंज आपकी ज़रूरत समझता है. आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में मज़ीद जानें. शराइत और ज़वाबत लागू होते हैं. मर्सिडीज बेंज जो हैं उनका अप टाइम प्रॉमिस अहलियत गाड़ी के मुताबिक, यानी कि आपका उसके लिए एलिजिबल होना गाड़ी के मुताबिक, और मर्सिडीज़ मजाज मरम्मत कारों से सर्विसिंग मशरूत है. ऑनेस्टली इतनी गाड़ी उर्दू तो मैंने खुद कभी नहीं मतलब यूज़ भी नहीं की होगी. एनीवेज शराइत और जवाबत लागू हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस लागू. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जाइएगा mbvans.co.uk/uptimepromise.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू.

0: travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Need anything from Tesco? We price match hundreds of the Tesco products you know and love to Aldi, helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. Price match to Aldi. Next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
0: This is Anissa Nasir with The Big Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
6: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
7: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
11: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
12: अपना बनाया तेनू,
11: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का. वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फर्ड.
13: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: It's summer on the Lyca Radio Network.

0: हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, और किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, हजार पाँव के नीचे क्यों ना कांटे ही कांटे हों, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। इसीलिए तो नहीं मोतबर जमाने में के रंग सूरत दुनिया नहीं बदलते हम, जो हैं सो वही हैं। और मेरे सच्चे और प्यारे हमनवा हमसफर, मेरे सुनने वाले, सो वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू नो व्हाई आई एम सेइंग थैंक यू।
1: दिस इज द Lyca रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: By the way, thank you. आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे emotional जो है messages के जवाब में था। आज currency की बात करें तो इंडियन रुपी आपको 1 pound दिला सकता है 127.989.1 अफगान अफगानी, 375.8 पाकिस्तानी रुपीज, 166.2 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Lyca. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Lyca Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Lyca Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at 107.03.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.

साथियों, कोई कॉमन रहा आज गीतों में। बहुत सारे और भी नाम शामिल कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट आवर में चलेगा।

0: talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज भी हो गया और अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये मैसेज आपको बताते हुए कि ये वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 127.1 इंडियन रुपीस. सो डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Ek dard-e musalsal mujhe sone nahi deta, dil sabr ka adi mujhe rone nahi deta. Main uska hoon ye raaz to wo jaan gaya hai, wo kiska hai? Maloom ye hone nahi deta. लीजिए दोस्तों, उल्टे पुल्टे की जानिब चलते हैं. चंद अल्फाज में आप तक पहुंचाने जा रही हूं और आपसे जानना चाहूंगी कि ये कौन सा गीत है. मजबूर बहुत, दिल तो जुबां को, ऐसी ही हालत. मजबूर बहुत, दिल तो जुबां को, ऐसी ही हालत. कौन सा गीत है?
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
0: This is Anissa Nasir with The Big Show. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just 8.96. 10 kilograms, only 16.96. And the big 20 kilograms pack, just 29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or her special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान फ्लाई.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ishq ki garmi ye jazbaat mujhe ko pesh kar dijiye apne farmaishi geeton ke roop mein jo ki already aap kar hi rahe hain. Dosto ab main kya bataun aapko ki time kam aur bahut sare kaam jo hain pending mein chal rahe hain. Jaise ki maine vaada kiya tha ki प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिन लोगों ने पूछा था कि गीतों में वर्ड कोई कॉमन है उनके नाम जरूर मेंशन करूंगी, तो अपना वादा निभा रही हूं. तोची पनेसर जी, दिनेश पोपट जी, निलेश जी, किरित जी, रानी जी सलाव से, लुबना जी लाहौर से, रीटा जी, शकीला नेडा जी, सैम शहजाद, दिलीप सरोज जी और उमर जी दुबई से, ऑल द वे फ्रॉम दुबई, वेल डन यू ऑल. और अब मैं दोबारा से दोहराने जा रही हूँ उल्टे पुल्टे के चंद अल्फाज. मजबूर बहुत, दिल तो जुबां को ऐसी ही हालत है. और आपको ये भी बता दूं कि राजा ऑफ द आवर हमें मिल चुके हैं. किरित जी वेल डन, आपने सबसे पहले भूजा. और कमल शिवनानी जी कहते हैं अगर आज मैं भूजता तो मैं शायद हैट्रिक कर जाऊं अगर मैं हूं सबसे पहले. नहीं, आज अब सबसे पहले नहीं है, आज अब तीसरे नंबर पर हैं. पहले किरित जी ने भूजा, फिर उल्लास जी ने और फिर आपने. वेल डन दो.
0: Leica Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact kijiyega Southall Travel ko aaj hi on 0208 574 8410. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Making summer feel better. This is Leica Gold.
2: सुहेल अशरफ जी ऑल द वे फ्रॉम आई थिंक यू आर इन लाहौर पाकिस्तान, मैसेज भिजवाने के लिए बेहद शुक्रिया. और ये मच्छरों का जिक्र मत करें, मुझे तो सोच करी ना थोड़ी सी वो खुजली होने लगती है. कहते हैं आज तो वो भी नहीं है, जो अच्छी बात है ना, नहीं है तो. वेलकम टू द शो एंड थैंक यू अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए.

0: दिल इतने ही नाज से दिए और लिए जाते हैं और फिर बाद में ओए होए होए होए होए बड़े बड़े पछतावे रह जाते हैं। एनी वेज, इन बातों को छोड़ें, आई होप कि आप गीतों को इन्जॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके बराबर मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी मिल रहे हैं और उल्टा पुल्टा आगे चल के देखते हैं कि और कितने नाम जो हैं वो शामिल हो पाते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: लीजिए आपको बता देते हैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की। तो इस बार आप सुनेंगे वकील जी को। जी हाँ, वो वकील नहीं है, एक्चुअल में वो बहुत प्यारे बहुत मजे हुए सिंगर हैं दोस्तों, और उनके साथ रवि जी की गपशप आप सुनने को जो है आपको मिलने वाली है, लिहाजा ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही म्यूजिकल एपिसोड।
2: लाइका एक्स्ट्रा Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: हाय, आई एम नरगिस फैक्री। वी आर नाउ ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ दुबई टू लंदन अगेन, सो इफ यू आर सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग दिस इज वेयर यू शुड बी।
11: NKN मीडिया दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anissa Nasir.

0: क्या बात है इन गीतों की और क्या ही बात है आपके पसंदीदगी की। अमिता जी, आई सिंपली लव यू, कहती आई सिंपली लव योर चॉइस ऑफ म्यूजिक। और ये जो चॉइस है, ये जो म्यूजिक है, आपके पसंद, आपकी सोच जहन में रखकर फिर ही तरतीब दिया जाता है। थैंक यू अमिता जी, ऑलवेज सेंड मी सो लवली मैसेजेस, बहुत काइंड, बहुत जेनरस। इसी तरह साथ बनाए रखिएगा।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound can get you 127.8 Indian rupees, 89.2 Afghani, 375.3 Pakistani rupees, 166 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at 107.03.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
3: Punjabi Tadka with Anisa.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: बस एक दिन और, कल है जन्माष्टमी। कान्हा के स्वागत का जश्न मनाइए स्वाद और खुशियों के साथ। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
3: Anisa Nasir with the big show, weeknights from 7 p.m.

0: और आज के दिन मुझे भी बहुत सारी शिकायतें बहुत सारे लोगों से, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं शिकायत भी कर सकूं, लेकिन आप मजबूर करते हैं तो बता देती हूँ। जिन आँखों ने देखे हों तेरे ख्वाब हमेशा, जिन आँखों ने देखे हों तेरे ख्वाब हमेशा, है दोस्त उन आँखों को रुलाया नहीं करते हैं। हर शख्स के दामन में सहारा नहीं होता, हर शख्स को यूं छोड़ के जाया नहीं करते, लेकिन एक प्यारी सी लड़की, बहुत ही जानी मानी सिंगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, जब उसे मैंने पहली बार सुना था, आप यकीन करें कि मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी कि ये वाकई आवाज़ इस प्यारी सी लड़की के गले से निकल रही है। ऑनेस्टली आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ से बहुत जिक्र हो रहा है आजकल तैयबा खान का, जो आ रही हैं आपके लिए बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस लेकर। दोस्तों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फर्स्ट टाइम आई और छा गई ऑल ओवर यूके, और इस दफ़ा दोबारा से सबके इसरार पर, सबके बेपना प्यार के जवाब में यहाँ पर हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम उनके कॉन्सर्ट्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें, उनका पहले खैर मकदम कर लें। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या बात है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
1: क्यों?
0: मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठे हो।
1: तो सामने बैठी हूँ
0: तो आप माइक के भी सामने आ जाओ ना।
1: आ गई,
0: जरा और करीब आओ।
1: ओके,
0: ऐसे, दैट्स बेटर, दैट इज मच बेटर।
1: कैसी
0: हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा। आपको देख के तो और भी अच्छी हो गई।
1: सदके जाओ।
0: तैयबा जी, आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका गलत नहीं कहा जाता।
1: आपने कह दिया तो हो गया।
0: नहीं, आप माशाल्लाह से हो इस काबिल, आप माशाल्लाह से हो इतने प्यारे। और दोस्तों आप लोगों के पुरजोर इसरार पर एक दफा फिर से शोएब आलम जी और उनकी एंटायर टीम जो है वो लेकर आई है इस प्यारी सी फनकारा को। यहाँ तो क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली शोएब आलम जी, जो कि मेरे भी एक तरह से, मैं क्या कहूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे स्टेज पर जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, और मैं आज तक उनका बड़ा मान करती हूँ, बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ा एहतराम करती हूँ। तो कवाली नाइट्स आप लेकर आई हैं सुनने वालों के लिए, मुझे जरा बताइए तो सही, थोड़ा सा खुलासा तो कीजिए।
1: किस चीज का,
0: कि कब कहाँ क्या हो रहा है? थर्सडे। मुझे पता है, ये आपको मैं बताती हूँ। देखें,
1: हमारे वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 26 को मैं इधर लंदन आ चुकी थी
0: जी,
1: और काफ़ी हमारे शोज पैक हैं, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, यकीन माने कि जब फर्स्ट टाइम मैं इधर लंदन आई थी तो हम कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लेकिन अभी 2 मंथ के लिए आए हैं, लेकिन ये हमारे शोज सारे बुकड है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अभी जो हमारा कमर्शियल शो है 9 September, 17, 11, आगे मजीद भी प्राइवेट इवेंट बुक्स हैं।
0: 9 September की बात कीजिए पहले, सबसे पहले 9 September का बताइए कहाँ पे हो रहा है।
1: वो हमारा इल्फर्ड लाइन पे है, और
0: इल्फर्ड टाउन हॉल में।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: बाकी जो शोज हैं वो सारे आपको पता ही है, वो आप भी बता सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आई विल एम्फसिस ऑन द वन व्हाट इज हैपनिंग ऑन, जैसा कि आपने कहा इल्फर्ड टाउन हॉल में 17 September शाम 8 बजे
1: जी।
0: और हमारी प्यारी सी तैयबा जी आपको गाकर बस मशहूर कर देने वाली हैं अपनी शानदार परफॉर्मेंस से। मुझे ये जल्दी से बताइए कि देखें, आप जब लास्ट टाइम आई बहुत थोड़े से वक्त के लिए आई और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस भी नहीं की, फिर भी आप छा गए भाई।
1: आप यकीन करें, जब, और मेरे लिए सबसे ज्यादा की बात यह है कि शिव साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम, मेरा ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर था
0: जी, जी,
1: जब
0: जी।
1: मैं फर्स्ट टाइम आई तो मेरा पहला शो इंडिगो 2 में किया गया।
0: वाओ।
1: और मेरे लिए वो एजाज की, बड़े एजाज की बात है, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने वो शो किया, हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मुझे यूके वालों ने बहुत प्यार दिया, खासतौर पर आपने।
0: यू डिजर्व दैट, आपने अर्न किया वो प्यार।
1: बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, और इस दफा भी मैं फुल तैयारी के, अपनी टीम के साथ आई हूँ और फुल तैयारी के साथ आए हैं। अभी भी धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे इस दफा भी इंशाल्लाह।
0: अच्छा, अब छोटा सा एक नमूना हो जाए यार, थोड़ा सा मुन्ना सा,
1: क्यों नहीं। जी, मेरा काफ़ी ट्रेंडिंग पे 1 million+ रील्स इस पे बनी है, मैंने कवर सॉन्ग किया था ये, और उसकी मैं चंद लाइनें आपकी ऑडियंस जो है उनको सुनाती जाऊंगी।
0: जरूर जरूर।
1: जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे डोले दी, वे कबूतरा आखी डोल सजन नू, कली मर जावांगी हां, आखी डोल सजन।

0: चिट्ठी मेरे माये दी वे कबूतरा वे कबूतरा। तो इस सॉन्ग का जो फेवरेट शेर है मेरा, मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपकी नजर करती जाती हूँ।
1: इरशाद जरूर।
0: खाते नहीं है हो के आते

0: ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਵਾਲ ਜਾ ਉੜ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਦੀ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ
1: क्या
0: सौ रब दी तेनू
1: क्या बात
0: ओनू लैके आवी ओ वेख ले आके मेरे खुले वाल वाल वाल
1: क्या बात है, बहुत खूब, बल्कि बहुत ही खूब। मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने अपनी टिकट्स का बंदोबस्त नहीं किया तो आज ही श्वेब साहब को कांटेक्ट कीजिएगा ऑन 07939137216 पर। नंबर वंस अगेन फॉर यू 07939137216। और इस प्यारी सी आवाज़ को बहुत सारे इसके अंदाज़ हैं जो आप देखना चाहेंगे। यहाँ पर तो इतना टाइम कम है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इनसे कहूँ ये भी सुना दो, ये भी सुना दो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लिहाजा आपका जाना बनता है। ख़ास तौर पर इस इवेंट को मैं कहूँगी कि थर्सडे 17 सितंबर मिस मत कीजिएगा। और अभी तो ये आई हैं, अब जाके दोबारा कब आएंगी और कब दोबारा मौका मिलेगा, लिहाजा ज़रूर जो है इस इवेंट को अटेंड कीजिएगा थर्सडे 17 सितंबर एल्फर्ड टाउन हॉल लंदन में 128-142 हाई स्ट्रीट एल्फर्ड IG11DD दैट इज़ द पोस्ट कोड। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी बातों से, आपने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था कि आप बहुत मानती हैं, बहुत चाहती हैं, सराहती हैं आबिदा परवीन जी को।
2: जी बिल्कुल।
1: आपकी मोटिवेशन, आपकी उनके अलावा कुछ?
2: हम वो एक बड़ी खातून हैं और हम उनकी उनकी उनके जूते की खाक बराबर
1: नहीं
2: हैं। हम अभी बच्चे हैं, अभी उठे हैं, अल्लाह हमें इज्जत दे और कोशिश करते हैं उन जैसा गाने की
1: जी।
2: और दुआ है सब लोगों से कि हमारे हक में दुआ करें और अल्लाह मुझे मजीद इज्जत दे और इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट मैं करूँ अपनी आवाज़ में, अपनी गायकी में, अपने अंदाज में। हर इंसान में कमियाँ होती हैं, तो अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह मजीद इस पर इम्प्रूव करूंगी और अपने आप को उजागर करूंगी और अपना बड़ा नाम बनाऊंगी इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं तैयबा। एंड आई विश कि मैं आपसे और बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर पाती, लेकिन ऐसा हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, लाइव शो है और थोड़ी सी देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको स्टूडियो में यहाँ पर आकर, और डेफिनेटली लाइक अ गोल के जो लिसनर्स हैं आपको बहुत सारा प्यार देंगे, स्पेशली जब आएंगे आपको लाइव परफॉर्म देखते हुए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड इंशाल्लाह मुलाकातें और भी होंगी, बातें और भी होंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लीजिए दोस्तों, ये थी वो मेहमान जिनका हमें इंतज़ार था और अब वक्त एज आई सेड और होता तो उनसे और भी बहुत सारी बातें होती, लेकिन एक दफ़ा फिर से जल्दी से बता देती हूँ, थर्सडे 17 सितंबर 8 बजे एल्फर्ड टाउन हॉल में आपने पहुँच जाना है, वरना आप ये बहुत ही शानदार सा इवेंट जो है वो मिस कर जाएंगे। उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शुएब आलम साहब का, ऐसे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट को लाने का सहरा जो है वो उन्हीं के सर पर बनता है। थैंक यू शोएब साहब।
3: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, दिस इज लाइक अ गोल्ड। Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
4: The top stories this hour. Andy Burnham has held talks with Emmanuel Macron in Downing Street. The leaders have agreed action on small boats needs to be scaled up. Opposition parties have been critical of the amount being spent on immigration measures. Meanwhile, the Conservative leader Kemi Badenoch defended spending cuts as common sense. She's set out proposals to increase the defence budget by slashing welfare spending. £3.1 billion would be saved by reimposing the two-child benefit cap scrapped by Labour earlier this year. Mrs Badenoch refused to rule out a return to austerity.
5: Living within our means, people try and look for terrible names to describe what is actually common sense. We need to live within our means. We should not be spending our children's money. We should not be leaving them with debt or making them unsafe.
4: The deadlocked jury in the Lindsay Clancy murder trial have been told to keep deliberating by the judge following a sixth day of discussions. The 36-year-old has admitted killing her three young children in Massachusetts, but claims she did it while suffering from postpartum psychosis. More than 1,200 people are now confirmed to have died in Nepal following the country's catastrophic flash flooding. Authorities say more than 4,000 people are still missing, including dozens of British nationals. Tens of thousands of homes are expected to need rebuilding. Actress Dame Joanna Lumley's long campaigned for Gurkha veterans and Nepalese communities. She was speaking from a vigil in southeast London.
6: It's mostly that gnawing anxiety about what's going to happen next and how people are going to cope with this, because there are going to be countless orphaned children. There will be whole livelihoods which have disappeared from entire villages, whole villages which have disappeared.
4: Campaigners have handed a petition to Downing Street calling for better protections for England's waterways. It's after hundreds of people have reported becoming ill after swimming this past summer. More than 70,000 pints of Guinness has been stolen from a depot in Cheshire. Thieves took two HGV trailers filled with around 800 barrels of stout. That's from Sky News. I'm AJ Walsh.
3: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: और अगर मैं कहूँगी मौसम मौसम लवली मौसम तो जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती उनको गुस्सा आएगा, लिहाजा गुस्सा नहीं दिलाते आपको बताते हैं आज ग्रेटर लंदन में रात को वेदर रहने वाला है. अगर आपको टेम्परेचर्स के बारे में बताऊँ तो 25 हाईज में 19 लोज में और बादल जरूर छाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं. ग्रेटर मैनचेस्टर में लोज ऑफ 16 डिग्रीज एंड रेनी कंडीशंस टुनाइट.
3: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: वेरी मच हाजिर. आपकी बहुत सारी फरमाइशें लेकर पूरे 10 बजे तक, 10 बजे से पहले मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, लिहाजा मेरा साथ निभाइएगा वरना अपनी फरमाइशें मिस करेंगे. वेरी गुड इवनिंग टू यू. किद्दा कीमी किंज
3: लाइक अ गोल्ड. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
8: TravelHub.
7: At all protected.
3: Leica. This is Anisa Nazir with the

0: मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, तुम गवाही दो। प्यार में भी गवाहियों की ज़रूरत पड़ जाती है कभी ना कभी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने, इस फाइनल आवर के आगाज़ में कहना चाहिए, आप तक पहुँचाए हमने दो अदद बहुत ही प्यारे प्यारे गीत और ये फरमाइशें थी। एक तो करीम साहब आपने सुनना चाहता और दूसरी सुषमा जी आपकी पसंद आपके नाम करते हुए बहुत बहुत बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये गीत जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। इसी तरह एक के बाद एक कोशिश रहेगी आपकी फरमाइशें प्रोग्राम में शामिल कर पाऊं।
1: दिस इज अनीसा नासिर ऑन लाइक अ गोल्ड ग्रेटर लंदन विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच।
0: दोस्तों आपको बता दूं कि वन ब्रिटिश पाउंड आज आपको दिला सकता है 127.1 इंडियन रुपीस, और भूलिएगा नहीं, एक्सचेंज कीजिएगा इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु,
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
10: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
11: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
9: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
12: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
15: Southall Travel invites you.

0: क्या ही प्यारा गीत, पिक्चराइज्ड ऑन अ वन एंड ओनली माला सिन्हा जी। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। फरमाइशें इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज पूरी कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कहीं ना कहीं आगे चल के प्रोग्राम में आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। फ़िलहाल तो एक फरमाइश एक पैगाम के साथ, और ये पैगाम भिजवाया है हमारी नाजमा जी ने, और ये वो नाजमा है जिसकी दोस्ती पर मैं जितना भी फख्र करूँ उतना ही कम है। शी इज़ नॉट दोस्त एक्चुअली, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, एंड शी सेड वुड यू माइंड डेडिकेटिंग अ सॉन्ग फॉर माई भाभी जी हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबासा। जी हाँ, किन्या से तशरीफ़ लाई हैं और याद कर रही हैं उस खूबसूरत से प्यारे से रिश्ते को जो दिल में तो है, जहन में तो है, फिजिकली साथ नहीं है। तो नाजमा जी, ये गीत मैं क्यों ना उनके साथ साथ, उन्होंने कहा कि इस गीत को आप नाम कर दीजिए का, मैं नाम ढूंढ रही हूँ उनका, कि उनका नाम है जनाब शमसुद्दीन जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस यस यस यस यस, क्या हो गया भाई, नाम कहाँ चले गए। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने चुना है, फरीदा कश्मीरी जी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो मुंबासा किन्या से तशरीफ़ लाई हैं। लेकिन एक वादा कीजिए कि जब आप लौट भी जाएंगी किन्या, तब भी आप हमारा साथ निभाएंगी, सम हाउ आप जो है यस शमसुद्दीन कश्मीरी जी के नाम करना चाहती हैं इस प्यारे से गीत को, बल्कि उनकी याद में खुद सुन के अब मैं तो खुद भी रोएंगी और इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी रुलाएंगी। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, आंखों में आंसुओं को भरने नहीं दिया। फरीदा जी आपका खैर मकदम है, यहाँ यूके में लंदन आप तशरीफ लाई हैं, और बहुत प्यार से नाजमा ने आपका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये गीत तो डेफिनेटली चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं, आंखों में आंसुओं को उभरने नहीं दिया, मिट्टी में मोतियों को बिखरने नहीं दिया, जिस राह पर पड़े थे तेरे पाँव के निशान, उस राह से किसी को गुजरने नहीं दिया। चाह तो चाहतों की हदों से गुजर गए, नशा मोहब्बतों का उतरने नहीं दिया। ये हिजर है तो इसका फकत वसल है इलाज, और हम सबका यकीन है कि रोज़े आखिर हम अपने प्यारों से ज़रूर मिलेंगे जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। ये हिजर है तो इसका फकत वसल है इलाज, हमने ये जख्म वक्त को भरने नहीं दिया। ताज के नाम, नासिर के नाम, शमसुद्दीन जी के नाम, और उन सभी के नाम जो इस वक्त अपने प्यारों के दरमियान फिजिकली मौजूद नहीं है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है
3: Like a Gold.
4: और ये वक्त है आप तक ये खबर पहुंचाने का कि बिग बॉस इज बैक. द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे 6 September. आई एम सो एक्साइटेड. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. जियो हॉटस्टार is now also available as an app on Sky TV.
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: दिस इज अनीसा नासे विद द बिग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
7: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में. एक ही दिन में 2 ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर बिग थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
8: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
0: One performer,
8: countless personalities,
0: a whole universe of entertainment.
8: Sunil Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
8: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network. Work.
9: Every morning a shopkeeper opens his doors.
10: Lights on, shutters up, staff ready.
9: But today's customers don't start on the high street.
10: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
9: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
10: They walk into your competitors.
9: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The Leica Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights.
1: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
0: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
0: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
0: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
5: डेजर्ट सफारी
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
6: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
0: साउथ हॉल ट्रेवल एट protected.
7: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बर्तन और एक्स्ट्रा जीवन दान जान
1: Catch the brand new season of Big Boss, hosted by Salman Khan. Starts this Sunday at 9:30 p.m. and every day on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house only on Jio Hotstar.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
9: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Leica Gold par.

0: Like our gold.
1: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, दो साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
1: Banana function rakha hua hai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: पायलिया छनकी के ना
2: छनकी छनकी।